पर आप भला करना है मनुख ने नींद का त्याग करना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का यह सच का मार्ग सानू यह नहीं दसता कि पहाड़ा दिया कंदरां विच जाके पुठे लटक जाओ तां प्राप्ति होगी, जां घर बार त्याग दो ग्रस्त त्याग दो, नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदियां ने ऐ गुरु के सिख, जे त्याग करना है तां अमृत वेले नींद दा त्याग कर, इशनान कर, ते अपने मालक दे चरणा विच जदों जुड़ेगा तां गुरु दे ओ बचन बाणी दे बचन ओ बोल तैनू एडे मिठे लगनगे कि तेरे प्राणा दा आधार बन जाणगे। इसलिए जिन्हां ने ए नाम दा रस पीता है आनंद माणिया, ओ ए समा कदे शौंके नहीं बिता सकते। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वादे, जो 3 बजे ठीक कीर्तन आरंभ हो जांदा सी, आप तां 12:15 बजे इशनान करके जुड़ जांदे सन गुरु नानक दे चरणां विच। ठीक 3 बजे कीर्तनिया सिंघां ने जे आके कीर्तन आरंभ नहीं कर दिता तां फिर आप शरंदा लैके गुरु साहब दे चरणां विच जुड़ जाना, आप कीर्तन करन लग जाना। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत ताड़ना करनी कीर्तनिया नू, क्यों भाई तू 5 मिनट लेट आया है, उस निरंकार की सच्ची दरगाह विचों सचखंड विचों तेरे 5 मिनट कटे गए हैं, 10 इहदा देना कौन देवेगा। जेड़े 5 मिनट तेरे बिना जपण दे एवें बीत गए अमृत वेले दे, उहदा कौन मुल चुका सकदा है। विचारी साडा जीवन सारा जीवन सौं के बीत जांदा है, सानू कोई ख्याल तक नहीं आउंदा, पर जिन्हां नू श्वासां दी कीमत दा पता है ओ अमृत वेले जाग के फिर जदों आनंद माणदे हन तां उहनां दे रसना तों मुड़ मुड़ ए शब्द निकलदे हन।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किवें गुरां दी कृपा दृष्टि दे सदका। ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं

0: अब की बार बख्श बंदे को बाहर ना पग मिले। बहुत दुख उठा ले जमन मरण, बहुत तकलीफा चल रही हैं। इस आत्मा नू अपने घर विच बुला लो, इस भटकदी भरम दी आत्मा नू अपने दर ते प्रवान कर लो, मुड़के जन्म ना होवे। बोलो
1: सतनाम,
0: जमन मरण तो मुक्त कर दियो। ये सारे पुआड़े जमन मरण करके ही सबनों वड्डा दुख जमन ते मरण दा ही है। बिच बचाले हो दुख तकलीफा कितनिया पाउंदा है, बार बार जमी जांदा, बार बार मरी जांदा है, कितनिया तकलीफा पाउंदा है। ते सच्चे पातशाह कृपा करो मेरे ते, मेरा जमन मरण कट दियो। हुण जहांगीर आम बंदा क्या जमना मरना कट देवेगा, वह तो खुद जमन मरण के गेट च पिया होया है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: वह कहिंदा पैसा लै लो, माया लै लै, पिंड लै लै। सिख कहिंदा महाराज इन झूठियां चीजां दे विच मेरा तो जन्म यह मौलिक जन्म निकल जाएगा। मैनू महाराज परमावो ना, मैनू यह झूठियां चीजां दे विच ना रखो, मैनू सच्ची दात बख्शिश करो। बोलो हुण यह गुरु तो बिना कौन करेगा, जमना मरना कौन कट देवेगा, मुक्त कौन कर सकता है, जमा तो कौन बचा सकता है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुक्ति दा दाता कौन है? हुण जहांगीर मुक्ति दे सकता है, किते नाम दी दात वो दे सकता है? नहीं। महाराज कहंदे हन जिस वस्तु को लैन तू आया राम नाम।

और कोई जून नहीं जिदे भी तू सिमरन सेवा परपकार कर सके। दुर्लभ देह पाई वडभागी, वड्या भागा करके तेनू प्राप्त हुई है। ते फिर इस विच नाम दा बीज बो, नाम दा वणज कर, क्योंकि तू वणजारा है नाम दा। तू संसार रूपी बाजार विच नाम दा वणज करन आया। ऐसा ना होवे तू अमोलक हीरे मोतियां ते लालां दा व्यापार करन आया होवे, ते टुटिया होया कच खरीद के अपने घर रख लवे। ता ओ कच दे घर विच रहन वाला मनुख कदे जख्मी होण तो बच नहीं सकदा। ए जो दुनिया दे पदार्थ हन, असी रात दिन भजदे हां उन्हां पदार्थां दे मगर, किवें मेरे कोल हो जान। हजूर कहंदे ने ए कच दी न्याई हन भाई, इन्हां पदार्थां विच रहन वाला सदा दुखी ही रहंदा है, कोई सुखी नहीं होया। सुखी तां परमेश्वर दे नाम जपण वाले हन। उन्हां नूं पुछ कितने उन्हां दे चेहरे खिड़े हन, कितने नूर हन उन्हां दे मस्तक ते, जो जपदे हन श्री वाहिगुरु। इसलिए नाम बीज लो, क्योंकि पता नहीं फिर ए मनुष्य जन्म मिलना है कि नहीं मिलना।

उनों युगों का धर्म है कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आ यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउणगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजिया ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए। सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ए ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सानू कि जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तो अपनी राह तो चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखर

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे बिना नाम तो मनुख।

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नां नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है ता की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिन सिमरन जैसे सींज सतारा बोले कुरु साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई बिन सिमरन

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरंग मनोमक मटकी कान फोरंग। कहने नी कृपाल चंद उदासी जी ने आए जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी छिच इच्छन कदा मेज जोरंग मनो माखियन मटकी कान फोरंग। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचों मगध दियां छिट्टां इंज बार आईया जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो। अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन ते शब्द भी उन्होंने ही है अलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी दे ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी कई तुका दी। अस्थाई दी तुक है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है कि गुणन को पहार है। अकाल उस्तत ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है दीनन को दाता है ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है ते ओ गुणां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर

सत्ता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियार। भटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाठ नाल, मारव ठाठ नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा चुपता। उस तो बाद इसे नु ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होवेगा वो होगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अवै बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अवै बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

साधज ना की अचरज कथा। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसाय थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग कर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध के संग लगे प्रम मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंच ते मूंची।

भाई शाह भाई गुरदास जी, इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन है, गुरमुख कौन है, जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। पहला नियम है निम्रता धारण करनी। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदिया होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जती है पर नारी ती भैन वखाणे, वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। ऐसा गुरसिख दा पवित्र जीवन है

धर पाछा आप बख्शिश कर रहे हैं भाई। जदों तो असी अपनी शुद्ध बुद्ध संभाली ते गुरुदेव पिता जी ने एक साडे कोलो वचन ले लिया, ओ केड़ा वचन सी आप इस तरह बख्शिश कर रहे हैं।